0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहा। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज़ में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार यह हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ही गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देश भर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

मुजाहिद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहलापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी की बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
1: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
0: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, है?
1: हाँ, और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज बुरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
1: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
1: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है, और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
0: बाय बेटा।
2: सब लोग आ गए।
1: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ, देखो देखो।
1: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
1: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
2: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
1: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना, उन्हीं से पूछो तुम।
1: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है, न बर्तन। अब तेरी माँ भला कितना खटेगी, बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
1: क्या पापा?
2: अरे, आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आ बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैंतरा है।
2: जी हाँ, वो तो है।
4: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो आगे शुरू बस करिए, हाँ नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ,
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
3: अरे बहू, हम सब एक ही साइड में हैं, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया, तू ये बता तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
1: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
1: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे? लेकिन
1: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
1: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
1: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ हाँ, सुना सुना सुना।
1: तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ,
1: वहाँ वो रोज शाम को आता है, दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
1: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा, अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
3: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
1: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
3: हाँ।
1: और भूरे को कुछ खाने को देता है
3: रोज,
1: और नहीं तो क्या।
3: अच्छा
1: हम तो डेली देखते हैं, और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
4: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
1: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
3: हाँ हाँ, कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
4: गुड़िया, याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
4: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, इसी समय की तो बात है।
4: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ, ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
1: ओ मम्मा, बुरे की बात बताइए ना।
2: हाँ, अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
3: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा,
3: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
2: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
3: हाँ।
2: पर उस दिन, हाँ अम्मा, उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
4: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे।
2: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
4: हाँ।
2: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
4: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
3: क्या, घर लाने का?
4: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
4: गुड़िया, उस रात क्या हुआ था याद है?
1: पापा, पापा, पापा!
4: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
1: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
4: अरे क्या है बताओ।
1: पापा, पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
4: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
1: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
4: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई।
1: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
4: इस समय लॉकडाउन में?
1: प्लीज पापा।
4: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं नहीं नहीं नहीं जा नहीं सकते।
1: अरे पापा
2: ठीक कह रहे हैं,
1: कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
4: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो।
2: हाँ।
4: अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है। तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
2: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए, और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
4: हाँ।
2: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट।

0: लीजिए ये सामान हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है। ये देखिए पानी है ना और रोटी, दोनों चीजें हैं। और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क, मास्क कहाँ है आपका?
1: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
1: अरे रखा है भाई।
2: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
0: तुम वहाँ क्या करोगे?
1: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार।
0: कमाल है आप तो।
1: तुम डरोगी तो नहीं ना?
2: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
1: हाँ तो चल चल चल,
0: डरोगी नहीं है क्या?
2: मम्मा प्लीज।
1: चलो चलो चलो, ले लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
2: हाँ हाँ पापा आइए।
0: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
2: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है। बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए।
2: इतनी रात को लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
2: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुँचे कि नहीं वो लोग। तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुँचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
2: हेलो हाँ मम्मा।
0: तुम लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं।
2: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों बोला?
2: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
2: और सड़क पर बहुत सारे डॉग से मम्मी सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
2: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
3: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई। अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
3: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
3: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर, हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे। पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
3: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
3: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
3: हाँ।
0: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
3: हाँ हाँ देख देख
0: ठीक है,
3: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
3: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
2: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
0: हाँ
2: जो कटोरा लाए थे ना, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
3: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे।

0: पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
1: अरे डर रहा होगा ना शायद।
2: मामा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है।
0: पता नहीं कब से प्यासा था, और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम। तुम लोग आसमान में टंगे हो।
2: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
1: हाँ, बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी है कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है। बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों। 15 मिनट का रास्ता पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं। जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
0: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूँ जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
0: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
1: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
0: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
2: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे साइकिल रिक्शा पे किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर दे वर रनिंग यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा टू देयर नेटिव प्लेसेस मामा दे वर एस्केपिंग माइग्रेटिंग।
0: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
2: हाँ, टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
0: अच्छा
2: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी एक अंकल थे बूढ़े से नंगे पैर मम्मा।
0: अच्छा
2: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
0: अच्छा
2: जितने वो सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
0: क्या,
2: यू नो पापा ने क्या किया?
0: क्या
2: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
0: अच्छा
2: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
0: हैं? हाँ हाँ सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
1: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
1: अरे
0: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
1: कोई बात नहीं कोई बात।
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो
3: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ।
0: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
3: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा, जिंदा बच्चा रहने की इच्छा का परम रूप चरम रूप जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ न सरकार न अमीर न गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
0: ये कौन लोग हैं?
3: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए

0: ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
1: आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है और वो भी जागते हुए।
0: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत। जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है। हाँ। काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या?
0: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
2: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
3: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
0: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
3: हाँ हाँ
2: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
3: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
2: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
3: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
2: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
3: हाँ,
2: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
3: हाँ।
2: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
4: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
0: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
4: बिल्कुल।
0: उनको उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
4: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी।
4: बस बस बस, शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, चलो पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
2: क्या मम्मी पापा आप भी ना? अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओह नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
5: गुड़िया,
2: अरे आप जाग रही हैं?
5: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
2: इज इट? क्या बात है,
5: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
2: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ओहो भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी की भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरे खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश है कि नहीं?
5: बिल्कुल खुश।

0: नानी, आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
1: हाँ बेटा, जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से, इत्मीनान से। मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके, गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
2: तो जानती हो मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
3: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना। हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और ध्येय अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी।